अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदासन बैठे देवत्या दरनाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे

भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मा माहे ता के रूप ना कथने जाहे ना ओह मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत।

विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जोग जोग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माछ पयाले, गावन

पास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में

जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड अवर नाम कोई, तू जोग जो

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोई। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

ना पहावई ता सब अडंबर कूड़। सब रस भोगण बाद है, सब रस भोगण बाद है, सब श्रृंगार विकार, जब लग शब्द ना पे।

वसहिं, ज्यों पावै त्यों निर्जास। जी अरे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए, तित जीम दिया मर मार। अनहद शब्द सुहावने।

क्यों बुझे जा नह बुझाई, आखन सुनना पौन की बाणी। इहु मन रत्ता माया, खसम की नदर दिल है पसंदे, खसम की नदर दिल है पसंदे, खसम की

सेवी अपना एक मन एक चित पहाए। सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए। मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए। नाउ ते आइए नाउ।

तीजा बहु भीख कर भरमाइए मन हृदय कपट कमाए हर का महल न पावई मर विष्टा माहि समाए मन रे ग्रही माहि उदास सत संजम करणी सो करे गुरमुख होए परगास रहाव गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याइय सत्संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करहें नवखंड राज कमाहें।

समाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करहें विचार मत बुद्ध भवी न बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी परम दे परम परम होए खुआर पूर्व लिखिया कमावना कोई न मेटन हार सतगुर शरणी।

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

है बूझै नाहीं आन दिन दुख विहानी मनमुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर शरणा।

जय भाए शब्द रतियां सोहा गणी तिन विच हो आहो मैं जाए तिन विच हो मैं जाए सदा पिर राव है अपना तिन्ना सुखे सुख विहाय ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर न पाया जाए अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे भुख ना जाए आवहु मिलहु सहेली हो मैं पिर दे हो मिलाए पूरे भाग सतगुर मिले पिर पाया सच समाए

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख बसया मन आए अंतर ज्योत परगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए

पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ विनसया तजया सब अभिमान।

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभु शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरहै मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देखै सुनै हदूर सद घट घट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहाव। गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीर्थ वर्थ लक।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखया

नानक तिस शरणागति जे सगल कटां आधार। श्री राग महला पंजवां रसना सच्चा सिमरिया मन तन निर्मल होए मात पिता साक अगले तिस बिन अवर ना कोए मेहर करे जे अपनी चसा न विसरे सोए मन मेरे साचा सेव जिचर सास बिन सच्चे

गुर जेवड़ अवर न को दूजा थाओ न को सुजै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पाथ गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड़ जासी लख करोड़। सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौ

रहाउ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात, जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शहु सेव तू साहुरड़ै सुख वस, गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगै दुख।

पंजवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसह त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याय गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापे गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौ तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाम सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

विस्तार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां दो

रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

पाए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

दास सतगुर शरणी आया बाहुड नहीं बिनाश हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

सच्चा नाम सास गिरास ना विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए।

जाए। नित रवे सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है। कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों तेरे बिन रहन विहाए अंक जलाओ तन जा लियो मन तन तन बल जाए अंक

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे।

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार साच मिले।

आहार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पहचान।

मन मुख पात गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत करह।

समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई। इकना मनमुख शब्द न पावै।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे लै समाए जियो गोपी ने गोवा लिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन सत

तुद विटहु कुर्बान जियो। हर इठै नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

जा जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसै न मिलिया भेत भेत चेत हर किसै न मिलियो जा जम पकड़ चलाया।

मात पिता सुत हेत मात पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करणी कार कराई राम।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंतकाल पछता।

कहो नानक भगत सोह है दरबारे, मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा, घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पे यड़े, क्यों कर हर दर्शन पिखै, हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै, सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख, हर हर सदा त्याए, तहिया विच फिरै सुहेली, हर दरगाह बां लुडाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम के रखै, मुंद इयाणी पे यड़े, गुरमुख हर दर्शन दे।

भलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हो मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा।

गोविंद नाम संभाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर निभै तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए, मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चित लाए, जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले, मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाउ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

अधारे गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोई न दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते संत। तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारी जियो सिमरत सास गिरास पूर्ण विश्वास।

शांत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर बस पए मन सर्व सुख बुठे गोविंद तुठे जन्म मरणा सब मिट गए।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वन जब

मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जम का फाहा गल हो न कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले।

कमाए कूड़ कुसात कमाए गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

लाए, विच हो आप गवाए, कह रहन सच लिव लाए। सतगुर जिनी ना सेवे तिन्ना बिरथा जन्म गवाए, नानक जो तिस पावै सो

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख

मुख उज्जले हर दरगाह पहंदे जाही। सलोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर मह

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कम

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मे

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम।

तारंग पानी धन सो देश जहां तू बसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जीओ हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जीओ रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता हुन कद मिलिए प्रिया तुद भगवंता।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महल

सोहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया अंध बिनोद तितै कर सोह है जो धन कंत सिंगारी जियो सागुणवंती सावड भागण पुत्र वंती सीलवंत सोहागण रूपवंत सा सुगड़ विचखण जो धन कंत प्यारी जियो अचारवंत साई परधाने सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सबराई जो पिर कै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए थिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्गुण

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मुहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावहु गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाईऐ होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजहै पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वट समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपियै तित तरियै गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवां।

अतोले, अकाल मूर्त अजूनी संभव, मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला, ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मन तृप्तायन।

तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन।

संत खेल है तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कै मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिन कै संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त।

खीर अगावै ज्यों निर्धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

गुण निदान अमृत हर नामा हर ध्याए ध्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई सब पौ बिनसै हर हर त्याई।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवां।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी, एकस स्यों चित लावणिया। गुरमति मन एकट घर आ

मनमुख पाप पजा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई

तिलविख अवगण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे भावै।

मनमुख मुगद करह चतराई ना ता तोता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछोता बनिया मनमुख अंधे किशु ना सूझै मरण लिखाए आए नहीं बूझै मनमुख कर्म करे नहीं पाए।

सच विहज है सच कमाव है सचो सच कमावणिया बिन राशि को वथ क्यों पाए मनमुख भूले लोक सभाए बिन

नानक नाम मिले वडियाई आपे सुन सुन ध्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतहो अंत हुए सखाई हर अगम अगोच

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम ना लेवै मरै बिख खाए।

माया मोह शब्द जलाया। सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम ना संभाल है से बड़ भागी। सच्चे शब्द आप हर नाम संभाल है से बड़ भागी। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभाल है से बड़ भागी। सच्चे शब्द आप मिलाए सतसंगत सच गुण गा बनिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे।

गुरमती आप बुझावणियां रहाओ। सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेव्या प्रगट होई। गुप्त प्रगट वरतै सब थाई, ज्योति जोत मिलावणियां।

गुरमुख सच्चो सच लिख है विचार, सेजन सच्चे पाव है मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच।

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमै चूकै पीर गुरमुख मन निर्म

मैं मल लाई मनमुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इशनान करे पर मैल ना जाई जीवत मरे गुर शब्द बिचारे हो मैं मैल चुका बनिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सह

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहै कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख निःकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

सगल मनोरथ तुम देवन हारा, भक्ति पाए परे पंडारा, दया तार राखे तुझसे ही, पूरे कर्म समावणिया अंधकूर।

मैं रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन को रंग रत गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर

मंगिर माहे सोहंदियां हर तिर संग बैठड़ियां तिन की सो भाक्या गणी जे साहिब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां।

हो भूख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्श परवाह हो माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान जन्म

गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेवह सत निरंजनो हर पुरख बिधाती तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वश

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै परती।

वड भागी सतगुर मिलै, वड भागी सतगुर मिलै, मुख अमृत पाईए। हो मैं दुविधा बिन सजाए, सहजे सुख समाईए।

मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाइय संत जन हो जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुना।

बिन सजाए कूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

त्यों मनमुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर के।

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब लागे।

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे।

सिर ऊपर ठाडो धर्म राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हो बंधो हो साधो बैर, हमरी भूम कौन घाले पैर।

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन।

सुख निदान हर अलख स्वामी, जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वड्याई, गौड़ी गुवारे री महला पंजवा। जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमरहो अनाथ को नाथ, प्रभ चित आए सब दुख जाए, भय सब बिन सह हर कह नाए, दिन हर पौ काहे का मन है, हर बिसरत काहे सुख जान है, रहाओ जिन तारे बहुत धरना।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस्यों मन रचना, कहो गुसाई।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ।

होमै निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संहारै अंतर साच सहज घर आवहै राजन जान परम गत पावहै।

पहला प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राखो रहना।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द

सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया। गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए जिचर शब्द ना पीजै हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मो आकार मर मर जम्मै वारो वार। सूतक अग्न पौणै पानी माहे सूतक भोजन।

गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई, लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

गुर कै शब्द पंच संहारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोह नत बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते भेख करे भेख धारी, अंतर तिश्ना फिरे अहंकारी, आप न चीने बाजी हारी। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत भरम पुलहाई।

दुख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, होमै मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथै लेखा मंगिए हर आपे लै छदाए, मन कर हला अत निर्म

पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना।

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करण हार पछाता तब इसनो नाही किशताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक है।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

दिन सबिताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद निश्चल सच थाना। तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सद वसै। तह पौ परमा सोग ना चिंता, आवन जावन मृत ना होता। तह सदा आनंद

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई

समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिझे। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी,

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

हो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे आन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको।

या जुग मह एक है कौ आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना देवनहार मन है बिसराना तार हो कृपा जिस है गुसाई एत उत नानक तिस बिसरहो नाही श्लोक

तुम्हारो राम नाम स्यों कर व्यवहारो चूरत चूरत साखत मुआ जा कर जय होत पाओ बिया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जा को कृपा गुसाई सलोक।

ना दुख सुख वाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख।

अखर महंत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा,

गुरुदेव बंधप सुहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखेर।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा।

दरगाह नहीं सिझै छूट सनाही ऊब पयाल मोह ब्याप है माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज।

साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम महे उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी महे अमृत बानी हर को जस सोन।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन्तु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझह प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद

अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल।

सुख मंदर तिसह त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभता कै। जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिम

सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म महसोदय राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश।

पदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राखे को आप मानुख कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ

कारी तारी सब सृष्ट आपे आप सकल मह आप अनेक जुगत रथ थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारम धार रहो ब्रह्मांड।

है ओट गही संत है दरियाया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जीवा लनहार भूखे कौ देवते आधार।

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन।

अतुल क्यों तुलिया सेवड भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की रीस होर।

पौड़ी जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े तुद नो सब ध्यान दी।

कृपा करहो हर गुर सफल दर्शन की। फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदे भगत मुखे ते बोल दे से।

रे हर वस्त संभाले नाम निधान हर बन जिये हीरे पर वाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड़ बेताले से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा

गए मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जहां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कढ़े लद्धो वारे। ओए अगै पिछै बह मोह छपाए।

पंडित गुणी सूर हम दाते, एह कह है बड़ हम ही, जिस है बुझाए सोई बुझे, बिन बुझे क्यों रहिए, सतगुर मिले अंधेरा चूक, इन विद मानक लहिए।

जिह साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, कट भीतर विभिद विकार, शुद्ध

हरै काम क्रोध अंतर तन हिरै दुविधा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सलाहन सहज आनंद सखा सैन प्रेम गोविंद आपे करे आपे बख्शिंद तन

पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार मोह तुम तजहो सगल वेकार मोह अर भरम तजहो तुम वीर साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ।

रहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, तीरज धड़ी बंधावे कामन, श्री रंग सुरमा देई।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस निहचल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर ना।

आढ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

सारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए ना फेरा, पारखियां वथ संभाल लई।

क्रोध अभिमान, शब्द मरै ता जात जाए, ज्योति ज्योत मिलै भगवान। पूरा सतगुर भेटिया, सफल जन्म हो।

तहै राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया। पढ़ पढ़

ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना पाना तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा

जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराशत दुख।